तरेव क्वचित् खगानां प्रियमानसानां कादम्ब संसर्गवतीव पङ्क्तेः अन्यत्र काला गुरुदत्तपत्रा भक्तिर्भुवश्चन्दनकल्पित

तत्वामबोधेन विनापि भूय स्तनुत्यजं नास्ति शरीरवन्न। श्वेतसलिला गंगार प्रवाह नीलसलिला जमुनार तरंगेर साथे मिशे एक अपूर्व शोभा धारण करेछे। कोथाओ जेन एक छड़ा मुक्तर मालार मध्ये नयन मनोहर इंद्र नीलमणि गेथे देवा हयेछे, आबार कोथाओ बा श्वेत पद्मेर मालाय नील पद्म गाँथा रयेछे, कोथाओ आबार मानस सरोवर गामी अमल धवल राजहंस श्रेणीर मध्ये एसे जेन नील हंस श्रेणी मिशे गेछे, कोथाओ बा वसुंधरार चंदन चर्चित कलेवरे कृष्णा गुरुर द्वारा पत्र रचना करे देवा हयेछे, कोथाओ जेन शुभ्र ज्योत्स्नार मध्ये एसे मिशेछे नील अंधकार, आबार कोथाओ जेन शरतेर विच्छिन्न शुभ्र मेघेर मध्य दिए सुनील आकाशके देखा जाच्छे, कोथाओ मने हच्छे जेन शंकरेर रजतगिरिनी भकले बरे भस्ये रंगराग करे ताते कृष्ण सर्पेर विभूषण परानो हयेछे, समुद्रपत्नी रूपिणी एई गंगा जमुनार संगमे जारा एक बार अवगाहन करे पाप मुक्त हयेछेन तारा जतई अज्ञान हन ना केन देहावसानेर पर तादेर एई दुःखमय संसारे आर आसते हबे ना, तारा मोक्ष पद प्राप्त हबेन।

0: फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स। तीसरा, बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और एटीएमपी ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: पाशापाशी मंत्रिसभा

0: हाथ में काट थे।
1: नहीं नहीं, यह झूठ बात, यह झूठ बात, अभी होता दीवाना।
2: बुआ, बुआ सोन, उतना जोर से मत जा, उतना जोर से मत जा।
3: ভুনো ফুলের ঝাপটাক পাশ সাপ বিছুয়ার আস্তানা ছিল।
4: সাহেবের কুত্তাটাকে ভি ও কেটে দিল।
3: সাহাব বিছুয়াকে মারনে কে লিয়ে ইনাম দেনে চাহতা।
0: উসি লিয়ে হীরালাল ও সাপটার লেজ পাখার কে টান মেরে ছিল। উল্টি খেয়ে সাপটা ছবল দিল হীরালাল কো হাত মে।
1: আরে বাবুয়া, अरे मेरे बाबूआ, तू कुछ कथा बोल। अरे बाबूआ, अरे मुंह से इतना फेना क्यों? अरे बाबूआ, अरे बाबूआ।
5: सब तुर बिल्कुल याद आछे खुशीलाल।
6: हाँ हाँ चिमन जी, सब कुछ बिल्कुल याद आछे हमार। इसके बाद रुपया पैसा खत्म होते लगलो। साहब का झोपड़ी में थकते चाहला मामला, लेकिन साहब हुकुम दिलो ना। बपुआर नामे वो झोपड़ी लिखा चिलो तो एकन बपुआ नहीं, उसी में हम लोग अभी की करे थाकबो।
5: हाँ, हाँ, इसका बाद तू और तोर माँ ऐसे उठली हमादे देर आए।
6: हाँ, हाँ।
5: राम जी नक्टा चरपाया जुगाड़ करे दिलो। कुछ दिन बाद फूलमतिया काजे धंधाए बहुत घूरलो। रामदीन तुआर लिए काम ठीक कर लो, लेकिन फूलमतिया तो
2: नहीं। इतना छोटी उम्र में हमार लड़का काम ने ना भर्ती होइस। अमी तो एखनो जिंदा आछी, हमार लड़कार खाना पीना और देखभाल हमी ठीक करते पारबो।
5: थोड़ा दिन बाद फूलमतिया तीन चारटे काम जोगाड़ कर लो। बहुत तकलीफ होते लगलो। रेल यार्ड से कोयला कुड़ी आंतो से तीन बाड़ी से घर का काम में लगे गलो, और गोबर कुड़ाए घुटिया बनिए बेचते लागलो। हीरा लालेर पावना रुपया मिलने का बाद विशाल बड़ा नदी का पास एक अच्छा जगह खुजे छोटो झोपड़ी बनाए नीलो।
7: दिल में बहुत जोर था खुशी का माँ की।
5: हाँ बहुत जोर, हर वक्त भूखे अगले रखतो खुशी के।
6: हाँ, हाँ।
5: दूसरा छत्तीसगढ़ी मेर मोतो मरदेर मजा लुफ्ते फिन शादी करे नी फूलमतिया।
6: और चिमन जी, हमें रेले काम करबो बोले, माँ हम आके खोले बसिए प्यार करे बोतो।
2: ये रेल का काम बहुत खराब आछे बुबुआ। तुर बापुआ ओई रेलेर गैंग मने नौकरी करे दारू पिए घर संसार किमन बेसमाल करे फेले छिलो। तू हार के आमी ओ काम ना करने दिबो।
6: लेकिन माँ,
2: तू पढ़ा लिखा सीखे चीज, तोर जन्य कुछ अच्छा कामे धंधा करते हबे बेटा। तू के लिए ना हमार बहुत बड़ा सपना आछे
6: माँ।
2: बुआ बहुत बड़ा।
5: सच बात, तोर माँ बहुत करे छे, बहुत तकलीफ करे छे तुहार लिए। जा रे खुशिया, तुहार छुट्टी हो गई, तू घरे चले जा।
7: हमियो छुट्टी करिए लिए छी, बाजार थे के सब्जी किनते होबे। चल एक साथ में चला जाइस।
6: हाँ, हाँ, चल। ओ सामने झरना जोले हाथ मुखटा धोए ली।
7: ठीक है चिमन जी।
5: अच्छा ए खुशी, अब सीधा घर जाइस। हाँ
8: हाँ चिमन जी, सीधा घर।
5: हाँ हाँ।

0: सिर्फ हम और मेरा धनिया।
1: तोर मा एखोन केमन आछे रे खुशिया? रात में चुपचाप थाके ना एखोनो चिल्लाय?
0: छोड़ो सब बात देवकी।
1: सेवकराम तोके नौकरी जोगाड़ करे दिए छिलो।
0: मार बीमार होलो, काम धंधा सब बंद, बुखारे बेहोश मां, उल्टी उठिए एक रोज मां पड़े गेलो माटी ते, तो हमें एक दिन मां के बूझ दिलाम। नहीं मां, नहीं नहीं मां, तू हर बात और ना सुनीस। हम इतना सुविधा जब मिला वो रेल लाइन का काम ही सीख बो हम यहाँ।
2: नहीं बेटा, हमी तो
0: माँ माँ मेरे प्यारी माँ, सब कुछ करे चीज तू हमारे लिए। लोकर बाड़ी ते बासुन माजा जोल तोला महुआर दुकाने पचाई बनानोर काज। नहीं माँ, नहीं।

0: माँ
1: कभी हमको छोड़ कर ना जाए।
2: लेकिन अभी तुहार माँ
0: ए तो भालो लड़की धनिया, लेकिन माँ केनो ओके
2: धनियार सा तुहार पहला मुलाकात तो ए जंगल में नारे खुशिया।
0: हाँ देवकी, सकाल बेला से दिन झपराखंड कुलियारी दिखे गए छिलाम। हाँ? लाइन मेरा मुतिर काम छिलो।
2: हाँ?
0: तो दुपुरे खावार छुट्टी टे में अकेला बोसे खाची।
2: अच्छा,
0: माँ चपाटी सब्जी बेदे दी तो कपूरेर पुंडुली थे।
2: हाँ?
0: तो खावा शेष करे सामने झोरना है जोखन पानी पीने गया ना, तो ठीक उसी समय लड़की जंगल में काट चोरी कर इसका
3: नहीं, नहीं।
0: तो की कर चली जंगल में थे, गाय भैंस चला चली ना की
3: नहीं,
0: ये भी नहीं। तब क्या नाम तुहार? अरे नाम क्या तुहार, कहा रही
3: धनिया? बाप कैला खनी में काम करता, कैला काटने का टाइम में धस चापा पुरे मोरे गलो, दूसरा शादी करे माँ भी चले गलो।
0: ओ तब तू अकेला, तुहार खाना पीना
3: बहुत कष्ट हमार, जंगल में गोबर कुराई घटिया बनाई, कभी कभी
0: कभी कभी क्या
3: कोयला चोरी करे बाजारे बिक्री करी, कोलियारी रे बाबूर घरे काम करी, खाना भी सिखाने मिले, रात में हुई बाबूर बारी बरांडा मिट जाए, तब एकन हम चली, बहुत मेहरबानी तुहार।
4: खुशिया, अरे आयो खुशिया, खुशिया, अरे तू इधर और हमी और रामदीन तू आके खुजे खुजे मरी, अरे ये कौन?
0: ये सेवक राम, इसका नाम धनिया आज धनिया, एक भैंस के जंगल में ताड़ा कुरे छिलो, बहुत डर लगे छिलो और डर के मार जंगल का इधर हमार कछे पलिए एलो। हाँ हाँ हाँ सेवक भाई, सेवक भाई धनिया बिल्कुल अकेला,
4: ये लड़की तो देखने से खूब सुंदर अच्छी और उम्र भी कम, तू यदि राजी था कि ताले बोल खुशिया।
0: हाँ?
4: इसका साथ तुम्हारी शादी का बात पक्का कर दीबो हमी। क्या रामदीन?
5: हाँ?
4: बात ठीक है ना?
5: हाँ हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात आज रे। हाँ बहुत दिन शादी गाना धूम लगी नहीं झोपड़ी ते। लगा दे खुशी का गाना लगा दे।
4: चल चल चल। हाँ? तब आज ही बातचीत करबो फूलमतिया मौसी का साथ।
5: हाँ, हाँ, चल चल चल चल चल।

0: ओ फूलमतिया मौसी।
1: अरे कौन है रे? ओ सेवक राम।
2: एक बात है तुअर उस्ताद मौसी।
1: का बात रे सेवक राम?
2: तुअर बेटवा का शादी ना करे इस क्या? इतना उम्र होलो तो लड़का का, और उम्र में हमी तो दुई लड़का का बाप बनिए गए छी।
1: हमार बेटुआ सबका समान नहीं, इतना कम उम्र में बहु घरे आन ले काम काज नुकसान हवे रे, और एखनो नौकरी पर मिंट होलो ना।
3: लेकिन शादी तो होलो तुहार।
4: हाँ होलो देवकी। सेवक भाई जिस बाड़ी ते धनिया था तो से कलियारीर बाबू और छत्तीसगढ़ रारो सब आदमी सब कहीं का बात में सेस में राजी होलो माँ। लेकिन लेकिन उसके बाद ही
3: क्या
4: असली बीमारी शुरू होलो मार।
3: असली बीमारी?
4: हाँ, और रात होले जब हमी और धनिया बिछाने नींद करते गेलाम। धनिया ए धनिया, तू खुशी तो
5: बहुत बहुत खुश। मेरा खुशी लाल मेरी दिल में बहुत खुश लेकर आया।
4: सच?

0: सच दुनिया,
1: सच सच सच। मगर तू?
0: अरे मैं तो बिल्कुल पागल बन गया इस दुनिया। काम का जो दिल लगे ना हमारे, हर वक्त दिल चाहे
1: क्या
0: तुके तुके बुक के भीतर में ऐसा करके एकदम हमारे दिल संगे तो दिल मिले दिए धनिया
1: मेरी खुशी,
0: मेरा जान तू मेरा जान धनिया धनिया धनिया तू मेरा जान धनिया तू मेरा जान धनिया।
2: कहाँ चली गली रे बुबुआ तू कहाँ चली गली?
1: माँ माँ बाहर रोता।
3: हाँ हाँ हम देखता है, हम देखता है।
2: बुबुआ रे, अरे ये घर हमारे शमशान बन गई छी रे बुबुआ। मैंने
3: अरे क्या हुआ माँ? माँ अरे क्या हुआ?
2: तू कहाँ चली गली रे बुबुआ? वो बेशरम लड़की ने हमको शेष कर चे।
1: हाय राम, हाय तू के हम।
3: अरे माँ रात में की तमाशा शुरू करे छे? सारा दिन काम करे एक घुमा बोताओ हो बे ना। चुप हो जा माँ, एकदम चुप हो जा। रोना दोना रात में नहीं माँ। अरे क्या हो रहा है माँ, चुप हो जाना।
4: अरे क्या हो रहा है?
5: अरे बीमार हुआ क्या रे?
3: नहीं नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ चिमन जी। रामदीन तमाशा है सिर्फ, तमाशा।
2: तू हमारा पास बैठे बुआ, तो के माथा है हाथ बुलिए घूम पड़ी दिच्छी।
3: अरे
2: हाँ बेटा,
1: हमार कुलीर ऊपर सो जा।
3: अरे माँ सुन सुन सुन।
5: अरे अरे ये तो सचमुच तमाशा है रे।
3: अरे नहीं माँ, क्या हो रहा है? ऐसा मत कर माँ, क्या कर रहा है तू?
5: चल चल
6: সেই তামাশা কি আভি তক চলছে?
0: হ্যাঁ হ্যাঁ দেওকি চল রহা হ্যায়, লেকিন আমি এখন সব বুঝে গেছি। এক এক দিন

0: टुकु छोड़ दे।
1: आ, माँ, फिर से तमाशा शुरू करो चेस। हाँ, तू क्या आज हमें हमें खत्म कर देगा? हमें खत्म कर देगा तू क्या आज के एकदम?
0: मार बेटा।
1: एकदम, एकदम,
0: एकदम, एकदम, एकदम, कारे बिटुआ, हार मार बिना, हार मार बिना। बैठ जा इधर, बैठ जा।
1: नहीं, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, तेरा पास कभी नहीं, कभी नहीं तेरा। इखोनो ये सब चुलचे रोज राते। अभी धनिया भी।
2: क्या हुआ धनिया की?
1: धनिया को भी आजकल बहुत डर लगे।
2: डर क्यों?
1: माँ धनियार दी के बड़ा बड़ा चोखे ताका है। धनियार दी के चे किसो बिड़बिर को रहे। कल घर से बासन कुसन सब फेंके दिए छिलो। धनियों के मरने भी जाती है कभी कभी। देखी उसी लिए आज धनिया हमा के काम में जेते मना भी करे छिलो।
0: आज मत जा तू काम में कुसे।
1: केनो धनिया?
0: तू काजे थकले डर नहीं, आज काजे जेते होबे ना तुके।
1: अरे धनिया आज हमी तड़ा थारी आसबो, तुके नहीं घूरते जाबो। हाँ सहारे थाकबो आज राते। केव कुछ बोलते परबे ना।
0: ठीक बात बलचीस।
1: ठीक बात, जरूर ठीक बात धनिया।
2: अरे खुशिया, तब तो आज तुधर बहुत खुशी का रात है रे।
1: हाँ, इसीलिए तो हम आज सीधा घर में जाबो देवकी।
2: हाँ हाँ हाँ, तू चला जा, हम स्टेशन घूरे जाबो।
1: अच्छा ठीक है, तब तू जा। आज धनिया का साथ बहुत मजाक हो बे, बहुत प्यार।

0: से बातचीत हो गई आज, बहुत प्यार से। धनिया
1: बोल,
0: जब ही तो हमार संग है।
1: कुथा
0: सोहर है
1: सहर गुरियान भी हमाके।
0: हाँ
1: जरूर जाबो। हमर बहुत शौक है खुशी।
0: की शौक?
1: तो संगे शहर घूरबो, मेला देखबो, सिनेमा जाबो, होटल एक रात थाकबो। इसके बाद एक दिन
0: क्या?
1: कुछ नहीं।
0: क्या कुछ नहीं? अरे धनिया बोल बोल।
1: एक दिन हमादर लड़का होबे बुबुआ के लिए, तखन हमरा फिर शहरे जाबो, बुबुआ जोने कुत्तो खेलना किनबो।
0: लेकिन हमार सक अलग, लड़का नहीं
1: तब
0: लड़की। हाँ बिल्कुल तू जैसी।
2: अरे दो चार मिनट इतना पच्चू ले लम सो भपते भपते हम। इतना लोग क्यों क्यों झुपे के पास? मार क्या कुछ हुआ? अरे क्या क्या क्या हुआ भाई? अरे इतना लोग क्यों भाई? भाई थोड़ा हटिए दिखने दीजिए ना, क्या हुआ? ये क्या है? धनिया सुया छे और मुख थे के फेना निकल जाचे। नहीं नहीं कभी नहीं। धनिया अरे क्या हुआ धनिया को?
3: तुम्हारी माँ धनिया को
2: का
4: चपाटी बनानो सुमाए फुलमतिया धुसरूर बीची पीछे ना मिसिए दिए छो चपाटी।
2: चिमन जी
4: और वो चपाटी ए पहला बार प्यार को रखेते दिए छो धनिया के। धनिया ये सब कुछ पूछते पारे नहीं और तूर कौता भेबे से चपाटी खे नहीं छो। खाने के बाद सब कुछ शेष धनिया बिटिया। धनिया अरे ओ धनिया, ए धनिया मुझे छोड़ के तू कहाँ चला जाइस रे धनिया? ए धनिया तोर से सो बातचीत की हो बे?
1: हमर बहुत साथ रिक्सी, तोर संगे सहरे घुरबो, मेला देखबो, सिनेमा जाबो, और एक दिन हमारे लड़का होबे, से लड़का के लिए तखन फिर हमरा एक दिन शहरे जाबो, और शहरे गिए और जनो कुत्तो खेलना किनबो।
2: एकुन कौन जाएगी मेरा साथ शहर में? दुनिया
5: महादेव, हाय महादेव, हाय सिद्ध बाबा, हमार जान लेके हमारा बुबुआ को अच्छा राग दे देवता, हमें फिर से खुशियाँ मिला दे भगवान।
2: नहीं नहीं कभी नहीं, तुमको आज हम छोड़ेगा नहीं माँ।
6: अरे भाई साहब, अरे खुशी को पकड़ो, अरे वो टांगी नहीं है फुलबतिया की खत्म करते जाते।
2: माँ तेरा जान आज हम जरूर लेगा, जरूर लेगा मैं।
5: आजा मेरे बुआ, तू आजा।

टंकी तो निकल गया। अरे माँ, दुनिया का सत उम्र भी आधा जान चले गए चे, तो पूरा जान लिबर जो ने टंगी लिया ऐसा छिलाम, मगर मगर तू हवा के बुबू आबुली टाकली माँ से बचपन ने नाम लिए हवा के तू माँ, अरे माँ मैं खुद अभी कैसे तो के खत्म करबो, अभी कैसे तो के खत्म करबो माँ बोल, तुके कैसे खत्म करबो बोल माँ।

0: Second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. President Donald Trump is also weighing options to expand the U.S. military operation to loosen Tehran's grip on the critical waterway. The Rath Yatra of Lord Jagannath will begin today at Puri in Odisha. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. Two-time Olympic medalist P.V. Sindhu produced one of her best performances of the season to outclass world number 5 Han Yue of China in straight games and storm into the quarterfinals of the Japan Open Super 750 badminton tournament today. P.V. Sindhu needed just 35 minutes to register a commanding 21-16-21-14 win over the higher-ranked Chinese shuttler in their second-round contest. In men's cricket, the second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. Earlier, India defeated hosts England by 6 wickets in the first ODI at Edgbaston, Birmingham on Tuesday to lead the series 1-0. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. Argentina will now play against Spain in the final on Sunday night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. P.V. Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open Badminton Tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यो को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा अब समाचार विस्तार से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है
2: BIMSTEC's long-standing goals
3: क्षेत्रीय सुरक्षा संपर्क निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में BIMSTEC के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए भारत के लिए BIMSTEC पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है
2: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन
1: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है
2: There is an urgent need for us.
3: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं।

0: और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000 लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन।
2: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
2: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है। यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
2: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा

0: ये जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडीचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15 रुपए

0: 50 पैसे प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी मैत्रीर प्रथम अधिवेशन शेष हलो। आमादेर द्वितीय अधिवेशन शुरू हबे भारतीय समय बिकेल 3:30 एवं बांग्लादेश समय बिकेल 4:00। एखन स्टूडियोर घड़ीते भारतीय समय 2:30 हये 20 सेकेंड एवं बांग्लादेश समय 3:50 सेकेंड।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक

0: हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29x45 है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और

0: 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
1: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में सीएसआईआर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
2: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
3: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस्म में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5

0: पांचवी या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी मैत्री अनुष्ठान प्रचारित होच्छे मीडियम वेवे 505 मीटरे अर्थात 594 किलोहर्ट्ज़। एखन शुनबेन कथाय गाने।

0: आमी ठेला गाड़ी शुदू ठेला मारी आमी ठेला गाड़ी शुदू ठेला मारी ठेला
1: बोल तो निके
0: आमी ट्रैफिक पुलिस रोड नहीं जल नहीं अच्छी खाना दानी।